0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनवालो, आप रेडियो ओज़ी ताजिक हिंदी कांड को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ और हमारे प्रोड्यूसर अब्दमेर याहियोयेव। इस घंटे के मुख्य खबरें। तजिकिस्तान मंगोलिया के बीच शिक्षा सहयोग पर पहला समझौते ज्ञापन। तजिकिस्तान और मंगोलिया ने अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। तजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के 81 कानूनी दस्तावेजों के मसौदा तैयार किया और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। तजिकिस्तान और मंगोलिया ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना पहला समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। ये दोनों देशों के शिक्षा मंत्रालयों के बीच पहला अधिकारिक समझौता है। ऐसे समझौते के तहत उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग, छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही संयुक्त सम्मेलन, सेमिनार, दयो

2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र के अवसर पर दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों की बैठक न्यूयॉर्क में हुई। वर्ष 2018 में दुशंबे में शंघाई सहयोग संगठन के शासनदीय अक्षों के बैठक के दौरान ताजिकिस्तान प्रधानमंत्री और मंगोलिया के उप प्रधानमंत्री के बीच वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच दूसरे दौर के राजनीतिक सलाह मशवरे बैठक भी आयोजित की गई। दोनों देशों के संबंध का कानूनी आधार पर द्विपक्षीय दस्तावेजों पर आधारित है। उच्च स्तरीय यात्राओं और सरकारी बैठकों ने सहयोग के कानूनी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन बैठक के दौरान विदेश मंत्रालयों कृषि क्षेत्र और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित नए समझौते और समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ताजिकिस्तान और मंगोलिया व्यापार एवं आर्थिक सहयोग तथा निवेश आकर्षित करने को विशेष महत्व देते हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के विशेषताओं को देखते हुए कृषि पशु उत्पादों के प्रसंस्करण हल्के उद्योग और खनन क्षेत्र में सहयोगी अच्छी संभावनाएं मौजूद है।

मित्रता मानव जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। एक मित्र को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है, पर हम ये कह सकते हैं कि मित्र वो व्यक्ति होता है जिससे हम अपने सुख दुख ही हर बात साझा करते हैं। विश्व में ऐसे कई किस्से, कहानियां और वास्तविक घटनाएं मौजूद है जिनमें मित्रता के रिश्ते पर लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आप हमारे प्रसारण से दोस्ती के बारे में कई शायरी सुनिए।

प्यारे सुनने वालों, ये थी कई शायरी दोस्ती के बारे में हमारे प्रसारण से। हमारा प्रोग्राम जारी है, सुनते रहिए रेडियो आवाज़ ताजिक।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र के अवसर पर दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों की बैठक न्यूयॉर्क में हुई। वर्ष 2018 में दुशंबे में शंघाई सहयोग संगठन के शासनदीय अक्षों के बैठक के दौरान ताजिकिस्तान प्रधानमंत्री और मंगोलिया के उप प्रधानमंत्री के बीच वार्ता हुई। इसी दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच दूसरे दौर के राजनीतिक सलामशवरे बैठक भी आयोजित की गई। दोनों देशों के संबंध का कानूनी आधार पर द्विपक्षीय दस्तावेजों पर आधारित है। उच्च स्तरीय यात्राओं और सरकारी बैठकों ने सहयोग के कानूनी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन बैठक के दौरान विदेश मंत्रालयों कृषि क्षेत्र और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित नए समझौते और समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ताजिकिस्तान और मंगोलिया व्यापार एवं आर्थिक सहयोग तथा निवेश आकर्षित करने को विशेष महत्व देते हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को देखते हुए कृषि पशु उत्पादों के प्रसंस्करण हल्के उद्योग और खनन क्षेत्र में सहयोगी अच्छी संभावनाएं मौजूद है।

मित्रता मानव जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। एक मित्र को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है, पर हम ये कह सकते हैं कि मित्र वो व्यक्ति होता है जिससे हम अपने सुख दुख ही हर बात साझा करते हैं। विश्व में ऐसे कई किस्से, कहानियां और वास्तविक घटनाएं मौजूद है जिनमें मित्रता के रिश्ते पर लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आप हमारे प्रसारण से दोस्ती के बारे में कई शायरी सुनिए।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल की हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

तजिकिस्तान के ऊपर शांति का सूरज चमके सूरज चमके शांति आज शांति कल शांति हमेशा शांति हमेशा शांति हमेशा।